0: इन्टरनेट, गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008813424 र 9850614175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला बिहानको ठिक 6 बजे हो।
5: टेक्नोलोजी हिकास्ट किर्तिपुर 90 61 89 मोबाइल 97 72 5 40 89।

0: कनेक्टेड, गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008213424 र 9850614175।
2: शुक्लागणदेखि टाइम चेक।
3: यति बेला दिउँसोको ठिक 2 बज्यो।
4: पागल है
5: क्यों?
4: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
5: बट व्हाई इज आइकॉनिक
4: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने गए? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई।
5: इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट। आई वाज इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू आर गेटिंग मी।
4: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।